याज्ञाकरं सर्वबलधारयो अनाति अनन्तो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमारिया तुमांगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमेन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवेम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

0: याज्ञाकरं सर्वबलधारयो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षं पन मातावन कन्यमरियतुमन्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।
1: शांत कुरसे अदयानमें अप सतुरंगेन अपगलवा देवा अपगे देवे स्वामिनी